0: चुगा त दिने नै फुर्से छपरङ
1: योगा देखाइछु
0: ओहो सम्धिका टिम विदेश देखाइमा दुःख बम
2: तिलिगेन खमल यो आलिङ्गन किन
3: ठेक बिबम
0: चुरिकेर आँगा त घो बढिम खेता खमलले सम्धि
2: खाल आँगा
0: ऊ थिए नि
2: ओहो सम्धिलाई आँगनी
0: चुरिन खाउ चुसी आज बन फेसोर्ची यार मङ्सिर 9 गते जभा साइद मुल्ला ब्रेलसङ लातोला सम्धि।

तल्किरहने हिमालबाट खोलो झर्यो बेसी सलालाला। नदेखे माया के हो कसो देखे माया झलमल हो तरिक तेला ठोरी करेला तिम्रो हाम्रो साली।

Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

बोली आस्था फुले फुले उनको कलामा डुबे मत कलैमा डुबे मत कलैमा ए डुबे मत कलैमा

मिठा मिठा भजन कीर्तनका निमित्त अशोक पाण्डे अफिसियल युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरी सँगैको घण्टी दबाउनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। जय श्री राधे।

मिठा मिठा भजन कीर्तनका निमित्त अशोक पाण्डे अफिसियल युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरी सँगैको घण्टी दबाउनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। जय श्री राधे।

मिठा मिठा भजन कीर्तनका निमित्त अशोक पाण्डे अफिसियल युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरी सँगैको घण्टी दबाउनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। जय श्री राधे।

मिठा मिठा भजन कीर्तनका निमित्त अशोक पाण्डे अफिसियल युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरी सँगैको घण्टी दबाउनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। जय श्री राधे।